0: ये है लाइका रेडियो, लाइका रेडियो। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.
4: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

ना विजानिए नाल चले सब कोए चंगा ना रखाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावी।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भाव।

0: What a classic that is from the hit film Anbar. You heard here on The Breakfast Show. 7:34 is the time. A very good morning, Kajal, with you till 10 o'clock here on The Breakfast Show. A lot of you getting the answer wrong for today's Bollywood flashback. It definitely isn't Golmaal.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: Okay, so let's quickly rewind and we'll play the same dialogue for you here on The Breakfast Show, and you work out the name of the film for today's Bollywood flashback.
2: अंदर कैसे है? I say get out.
3: मैडम, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ.
2: ये तुम्हें उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन तुम हमारी बस में घुसे थे.
3: अरे मैं बेवकूफ उसी दिन को कोस रहा हूँ. ना उस दिन नाच रहा था और ना आज मेरा बैंड बाजा बज.
2: इतनी जल्दी घबरा गए? हमने तो तुम्हारी बारात निकालने का फैसला किया है.
3: मैडम, मेरी बारात निकालिए, जनाजा निकालिए, जिस्म से जान निकालिए, लेकिन इस कमरे से मत निकालिए, क्योंकि इस कमरे से निकल गया तो शिमला से निकलना पड़ेगा और शिमला मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन है. आप जो जी चाहे सजा दीजिए, लेकिन नौकरी बचा लीजिए, क्योंकि मेरी माँ.
2: तुम्हारी माँ है?
3: हाँ हाँ, अब तक तो है. अगर उसे मालूम पड़ गया कि मेरी नौकरी चली गई, शायद वो
2: नहीं.
4: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719.
0: I think from this now you can work it out.
4: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currencies are trading at 129.38 Indian rupees, 377.62 Pakistani rupees and 439.11 Sri Lankan rupees.
5: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Back-to-back hits across the LEICA Radio Network.
0: Okay, so try and work out today's Bollywood flashback. In the meantime, let's go back 33 years, because on this day, 33 years ago, Parampara was released. And of course, this film was a huge cast, a massive hit film with Sunil Dutt, Vinod Khanna, Ashwini Bhave, Aamir Khan, Saif Ali Khan, Ramya Krishna, Neelam, Raveena and Anupam Kher.

0: सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
1: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.

0: Mica Radio.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Ah!
4: May को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका. कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग. पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 02085748410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

குட் மார்னிங். स्वागत है, खुशामदीद जी आया नू, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में बहनों भाइयों दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूं लेकर के मनोरंजन प्रोग्राम. बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के मई महीने की 14 तारीख और भाई वक्त वही जब आप और हम मिला करते हैं और संगीत के सुहाने सफर पर साथ साथ चला करते हैं. लेकिन भाई आज बृहस्पतिवार है इसलिए कुछ ऐसे भी गीत होंगे जो साथ चलने वाले नहीं, साथ छोड़ने वाले, दिल तोड़ने वाले भी हो सकते हैं. कुछ एक गीत भाई उन्हें भी तो जगह मिलनी चाहिए ना. और आज के दिन हमारे कुछ श्रोता इस तरह के गीतों का इंतजार किया करते हैं क्योंकि वो दर्द से प्यार किया करते हैं. तो इजाजत है

0: सभी जख्म जख्म से मरहले, सभी बेयकीन से सिलसिले, कोई और वक्त मिला जिसे उसे पूजता कोई और है। कहीं चांदनी के गुब्बार में तुझे छोड़ के कोई आ गया, और कहीं जुगनुओं की कतार में तुझे ढूंढता कोई और है।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Like a.
0: कहीं चांदनी के गुबार में तुझे छोड़ के कोई आ गया, और तुझे जुगनों की कतार में ढूंढता कोई और है। कहीं जुगनुओं की कतार में तुझे ढूंढता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, और तुझे चाहता कोई और है। ऐसा होता है तभी दर्द जन्म लेता है।

0: दूर से ही दिल की प्यास बुझती रहे, नजदीक आने की इजाजत नहीं। सांस लेने से जिस्म दुखता है, क्या कहूं किस कदर थकावट है। सच्ची खुशियां करूं तलाश कहां, जिस तरफ देखिए बनावट है। किस तरह प्यार पे यकीन आए, सारे रिश्तों में अब मिलावट है। पास तेरे भी आ नहीं सकती, राह में हर जगह रुकावट है। What a song, and that was from film Bobby, और I think that was picturized on Aruna Irani. भाई ध्यान नहीं मुझे अरुणा ईरानी पर था या वो बेबी फरीदा, नहीं बेबी नहीं, वो अब तो फरीदा जलाल बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन साहब फिल्मों में तब से काम कर रही हैं जब से वो बेबी फरीदा होती थी गुनाहों का देवता में उनका छोटा सा रोल, उससे भी पहले वो मेरा ख्याल राम और श्याम और कई फिल्मों में वो बच्ची के रोल में आई थी, पर उस समय से बड़ी प्रभावशाली अभिनेत्री। भाई ये गीत जो है दर्द भरा वियोग, और आप जानते हैं राज कपूर तो संगीत के पारखी थे, वो भाई किसका संगीत था बॉबी फिल्म में, शायद लक्ष्मी प्यारे का। भाई संगीत तो बहुत जबरदस्त होता था राज कपूर की फिल्मों में। तो दो गीत हमने आपको परोसे, दो गीत सुनवाए। पहला था तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, होता है, एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द दिल है कि मानता नहीं, क्या से मना है भाई दिल को साहब। और ये था फिल्म बॉबी से। दो गीत सुनवाने के बाद अब हम आपको बताते हैं पाउंड का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने पैसे दे रहे हैं आज एक पाउंड के बदले।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK telling that it's a still nice rate if you want to send money to your family members back home in India. भाई एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में, they are giving 129.05 rupees maximum. और साहब यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Leicester, it's time to celebrate.
7: Rouge Millers brings you the ultimate 50 fest.
6: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
7: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
6: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
7: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
6: £10 for a food chopper. £25 for a tea pan or kadhai pan.
7: Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 fest, every shoppers a winner.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Mantra Holidays wishes you and your family

0: two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: LenFi means quicker and safe way to send money.
2: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
1: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKEA.
2: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
3: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
4: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
5: मैं कलियों से घिरा रहता हूँ पर खुशबू नहीं आती. मैं कलियों से घिरा रहता हूँ पर खुशबू नहीं आती. वहाँ रौनक नहीं होती जहाँ पर तू नहीं आती. घड़ी टिक टिक तो करती है, टिक टिक घड़ी टिक टिक तो करती है, कहीं टिक कर नहीं बैठी. घड़ी जो तुझसे मिलवाए घड़ी वो क्यों नहीं आती. और तुझे मैं हाले दिल लिख भेजता पर हाय मजबूरी. तुझे मैं दिल का हाल लिख भेजता पर हाय मजबूरी. तुझे हिंदी नहीं आती मुझे उर्दू नहीं आती. ए भाई बृहस्पतिवार है, हंसने हंसाने की बात नहीं. नहीं भाई गंभीर बात है. मुझे याद है कि यहाँ लड़कियाँ जब कभी चाय कॉफ़ी बना के दी जाती हैं स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बुजुर्ग और वो सेवा कर रही हैं. वैसे ही एक बार अनीसा जी ने चाय देते हुए कहा था, शर्मा जी साथ में कुछ लेंगे? मैंने कहा लूंगा, एक प्लेट उर्दू ले आओ. एक प्लेट उर्दू? अरे साहब क्या नफीस उर्दू बोलती हैं वो. लेकिन साहब उन्होंने कहा कि उर्दू सीखनी है शर्मा जी, तो आप अपने वहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ का दौरा करके आइए. अरे साहब लखनऊ की हवाओं में उर्दू है. वहाँ तो गांव में उर्दू है, शहर में उर्दू है, नगर में उर्दू है, घर घर में उर्दू है.

0: Yes.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ये लखनऊ की सरजमी, वही गीत सुना, बढ़िया लगा बिल्कुल एकदम उर्दू जैसे नफीस। और उर्दू के बारे में बात कर रहा था मैं, तो एक बार इंटरव्यू के दौरान मेहदी हसन साहब ने मुझसे कहा था कि शर्मा जी उर्दू बढ़िया सुननी है तो आप उधर अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर उधर जाइएगा, और ये उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है, आप इसे पराई ना समझें। तो मैंने कहा कैसे, मैं पाकिस्तान की नहीं? बोले नहीं, पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है उससे भी बढ़िया हिंदुस्तान में बोली जाती है, और हिंदुस्तान से जो लोग आए हैं मुजाहिर बनके वही उर्दू अपने साथ लेके आए हैं, वरना आमतौर पर वहां तो पंजाबी भाषा और फिर उससे आगे जितना जाएंगे तो भाई उर्दू जो है वो कमजोर पड़ती जाती है। बढ़िया उर्दू के लिए थैंक यू मेहदी हसन साहब सुझाने के लिए कि यूपी में बोली जाती है, राइट। और बहनों भाइयों, अब समय हो गया है खबरों का, यस 10:30 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आज के प्रमुख समाचार लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा लाइका रेडियो।
3: अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक जवाब ने उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को लेकर अटकलें पैदा कर दी हैं। पहले खबर आई थी कि टेंपल ऑफ हेवन में फोटो खिंचवाने के दौरान बातचीत को लेकर पूछे गए सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार से वेट कहा था, इंतजार करो। हालांकि अब अमरीकी प्रेस पूल में इसमें सुधार जारी किया गया है। इसके मुताबिक ट्रंप ने वेट नहीं बल्कि ग्रेट कहा था। ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि बेहतरीन जगह, अविश्वसनीय है, बहुत खूबसूरत, चीन बहुत सुंदर है। दोनों नेता टेंपल ऑफ हेवन के जाने माने प्रतिष्ठित मुख्य भवन के सामने फोटो खिंचवा रहे थे। ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे प्रेस पूल के पत्रकारों ने दो बार पूछा कि क्या दोनों नेताओं के बीच ताइवान पर चर्चा हुई, पर दोनों में से किसी ने भी जवाब खुलकर नहीं दिया। भारत से आने वाली खबरों में, भाई कल आए तेज तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के जो असर देखे गए, वैसे ओलावृष्टि यहां भी हुई, तेज बारिश और ओले गिरने की घटना घटी। ओलावृष्टि के चलते भारत में, उत्तर प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन और राहत कार्यालय के मुताबिक इस आपदा में 89 लोगों की जान चली गई है, यूपी में हुई इस भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान, बारिश, ओले गिरने और आकाशीय बिजली की घटनाओं में 53 लोग जख्मी भी हुए हैं और 114 मवेशियों की भी मौत हुई इस घटना में। दिल्ली में प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंगरेप का एक इल्जाम सामने आ रहा है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई इलाके में एक प्राइवेट स्लीपर बस के अंदर महिला से गैंगरेप के आरोप में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आज बताया जा रहा है कि यह घटना 12 मई को हुई थी। हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बस के ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक बार फिर कोलकाता के हाईकोर्ट में दिखाई पड़ी। तृणमूल कांग्रेस ने एक्स पर बयान जारी किया है कि टीएमसी की प्रेसिडेंट ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से चुनाव के बाद फैलाई गई व्यापक हिंसा से जुड़े मामले में, इलेक्शन के बाद जो वायलेंस की घटनाएं घटी उनके मामले में दलील रखने के लिए खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। और साहब, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं वो टीएमसी वाले ही कर रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता बन करके, बनावटी, वो तृणमूल कार्यकर्ता थे असल में, छानबीन जारी है। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने संगठन के ढांचे के भीतर सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है और इस साल के अंत में ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है। रूस, ईरान, ब्राजील और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाली इस बैठक का उद्घाटन करते हुए भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि दुनिया इस समय बड़े भू राजनीतिक, आर्थिक और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। अनिश्चितता ये भाई क्या कही, थोड़ा सा उलझन में, उहोपोहो में। एस जयशंकर ने कहा कि हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब इंटरनेशनल रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। केरल में नए मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रदेश कांग्रेस आला कमान ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल यानी एमएलएज की जो बैठक हुई उसमें 7 मई को तिरुवनंतपुरम में होने वाली इस बैठक में सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुनने की जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष को दे दी गई यानी खड़गे साहब को दे दी गई। अब प्रवक्ता ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के संसदीय चेयरपर्सन और लोकसभा में अपोजिशन लीडर भी उनके साथ विचार विमर्श करके सांसदों के साथ गहन विचार करके और वीडी सतीशन के नाम को सुझाया है और अब बता दें कि वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई जो चीन के दौरे पर हैं और उनके 2 दिन के दौरे से कई खबरें जो है वो अटकलों को लेकर के सुनने में आ रही हैं। ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों से पूछा गया कि दोनों नेताओं के बीच ताइवान पर चर्चा हुई या नहीं हुई, कहते हैं वो टाल मटोल करते रहे लेकिन ये समझ में आ रहा है कि चीन ने साफ साफ कह दिया है ताइवान पर दखलंदाजी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच तय समय से 1 घंटा ज्यादा तक उनकी बातचीत चली और आज शाम डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में एक स्टेट जो है बैंकवेटिंग यू कहिए कि राजकीय भोज आयोजित किया जा रहा है, इसमें दोनों नेता मौजूद रहेंगे। उधर ताइवान ने अमेरिका के समर्थन पर आभार जताया है यानी अमेरिका की हिमायत ताइवान के साथ है, लेकिन पता चला है कि शी जिनपिंग ने ताइवान पर अमेरिका को वार्निंग दी है, ये चीनी सरकारी मीडिया कह रहा है। न्यूयॉर्क में चल रहा था चाइना का एक सीक्रेट पुलिस स्टेशन, सुनने में आया है चौंकाने वाली खबर। 64 साल के लू जियानवांग पर इल्जाम था कि उन्होंने 2022 की शुरुआत में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में चाइना टाउन इलाके में एक चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के लिए एक स्टेशन खोला और संचालित किया चलता रहा। चीन के मुताबिक इन ठिकानों को पुलिस स्टेशन मानने से इनकार किया उन्होंने। उनका कहना है कि ये सेवा केंद्र है, सर्विस सेंटर है चाइनीज लोगों के लिए जो विदेशों में रहने वाले चाइनीज सिटीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार, समाचार समाप्त होते हैं।
4: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
3: वेरी गुड मॉर्निंग, लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये है मनोरंजन प्रोग्राम विद रवि शर्मा। लौट आइए संगीत की दुनिया में। किसकी तलाश है भाई, जरा सोचिए, कोई सपेरा बीन बजा करके उबड़ खाबड़ जमीन पर खड्डों में कुछ ढूंढ रहा है।

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester, and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ।
2: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
5: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
6: खुद से भी ज्यादा।
4: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
6: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
4: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों के डाल। भाई एक बार ये गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किया काफी समय पहले, और फिर साथ में कह दिया कि ये वो गीत है जिसमें मनोज कुमार साहब दो दो हीरोइंस पर लाइन मार रहे थे। तभी उनके बेटे भाई विशाल का फोन आया, कहते रवि जी पापा जी सुन रहे हैं, जरा संभल के बोलना। फिर मैंने माफी मांगी क्योंकि मनोज साहब सुन रहे थे भाई, कभी कभी वो सुन लेते हैं, सुनवा देते हैं, और उनके बच्चे सुनवा देते थे उस समय। अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन याद आते हैं मनोज साहब ऐसी फिल्मों के कारण। विशाल के साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिए भाई थोड़ी सी वो क्या कहते हैं घनिष्ठता बढ़ गई थी। है साहब, गीत संगीत सूचना समाचार चिंतन विचार ये सब आपको मिलता है लाइका रेडियो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Well, मैं आपको रेट्स बता देता हूं भाई। Swiftly जो है इस समय एक पाउंड के बदले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 129.49 रुपीस, पाकिस्तानी 376.61, श्रीलंकन 430.12, बांग्लादेशी टके 165.94 एंड अफगान अफगानी 86.51।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of, what is the rate? 111.49 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: Leica Radio.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भाई आईपीएल के मुकाबले दिलचस्प दौर में पहुंच चुके हैं। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कितने विकेट से हराया, 6 विकेट से हराया 5 गेंदों के रहते। भाई दोनों टीमों ने अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन विनर्स वर RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आज कौन खेल रहे हैं, किसके खिलाफ खेल रहे हैं भाई? पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत होगी। दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होगा। स्कोर के आंकड़े यहां होंगे लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA। Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
4: हमजा समोसा 3 for 10।
5: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
4: सुहाना मसाला 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
5: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
4: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54U UN.
4: While stocks last.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit WesternUnion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
14: Halke fulke moments ko aur bhi khas banaye Jamin Snacks ke halke fulke puff bites ke saath.
15: Rice kaun se bane light aur quality mein best? Jamin puff bites jo hai barbecue, lemon chili, mast masala aur Mexican salsa jaise flavors mein available.
14: Jamin puff bites available at your nearest ethnic grocery stores.
16: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
17: जगदात्री,
16: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
17: माला ले आना, लाया जी।
16: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
18: टीम, get ready for the action।
16: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर, अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
19: अभिना, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
20: अगर हम साथ हैं
19: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
21: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
22: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE392 एंड अप टीवी। प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
23: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉनस्टॉप।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में और इसका आरंभ भाई हम चिंतन से किया करते हैं दूसरे दौर का। याद दिला दूं, माय नेम इज रवि शर्मा, मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूं और इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं, मैं तैयार हूं चिंतन परोसने के लिए। थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन।

आज की चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर अनुराधा पांडे का भेजा आलेख। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा मीठा सा निमंत्रण साथ भेजा है। कहती है कि भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा आज 14 मई को हम एक हिंदी महिला कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप उसमें इनवाइटेड हैं। तो मैंने कहा, मैडम ये हिंदी महिला कवि सम्मेलन है, इसमें मेरा क्या काम? महिलाओं के लिए है। तो कहती है कि महिला कवि सम्मेलन है, महिला श्रोता सम्मेलन नहीं है। श्रोता सब आ सकते हैं, पर आप कभी कभी श्रोता बनकर भी आया करें। हमेशा मंच पर ही माइक के सामने हो ये जरूरी नहीं है। थैंक यू अनुराधा जी। और फिर कहती है कि महिलाओं का जिक्र हुआ है तो ये बता दूं आपको कि कल आपके प्रोग्राम में एक गाना सुना, नारी होके पिए विस्की और पिए सिगरेट बेबी। क्यों? नारी होके या पुरुष होकर के सिगरेट पिए दारू पिए उन्हें रोकते नहीं है। बात तो सही है, लेकिन मैडम बात यह है कि गाने में ये बोल शायद मनोज कुमार साहब ने इसलिए शामिल किए कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि नारी कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे समाज में दूसरों को बुराई की ओर बढ़ने के लिए जो है वो क्या कहे एनकरेजमेंट मिले। नारी तो कोमलता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ओहो आप इसे चमचागिरी कहें कुछ भी कहें, लेकिन साहब मानना तो पड़ेगा कि हर फील्ड में, और वो याद दिला रही है कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, वाकये हैं कि जहां नारी ने अपनी श्रेष्ठता, पुरुषों पर भी श्रेष्ठता साबित की है। अब देखिए भाई, मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारे यहां से मानुषी छिल्लर जो है वो आज अपना जन्मदिन मना रही है। हरियाणा की है ये लड़की, और ये क्या कहते हैं ब्यूटी क्वीन, वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना मिस वर्ल्ड का, वो इन्होंने जीता। और हमारे ही शहर से मेडिकल कॉलेज से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके भी विश्व स्तर पर अपने सौंदर्य का सिक्का जमवाया। और बहनों भाइयों, वैसे तो एक से बढ़ के एक नाम ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं। महिलाओं की ओर से एक प्रसंग उन्होंने लिख भेजा है डॉक्टर साहब ने कि आज से लगभग 175 बरस पहले, जब समाज में लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं माना जाता था, तब एक महिला सावित्री बाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाने का एक साहसिक काम शुरू किया। लड़कियों को घर में ही रखा जाए, उन्हें सिलाई कढ़ाई रोटी खाना बनाना बस यही सिखाया जाए, वो पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बन सकती हैं, मिस वर्ल्ड भी बन सकती हैं, वो पायलट भी बन सकती हैं, वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। लेकिन ये साहब 175 बरस पहले की बात है। ऐसे में सावित्री बाई फुले एक स्कूल तक पैदल जाती और वहां जाकर के छोटी छोटी लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू कर रही थी। बच्चियां भी आ जाती थी, लेकिन रास्ते में कई लोग उनका विरोध करते कि लड़कियों को आप घर से निकाल रही हैं, पढ़ने लिखाने लिखने के लिए जो है प्रेरित कर रही हैं, हम आपको उधर नहीं जाने देंगे। तो साहब उन पर पत्थर फेंके जाते, कीचड़ फेंका जाता, मिट्टी डाली जाती और गालियां बरसाई जाती, पर सावित्री बाई ने हार नहीं मानी। अब देखिए साहब, वो क्या करती थी कि बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके चलती थी। अब रास्ते भर में कीचड़ मिट्टी फेंकने से जब उनकी साड़ी खराब हो जाती तो स्कूल में पहुंचते ही पहले वो अपनी साड़ी बदलती और उसके बाद आसपास के पड़ोसी से बच्चों को इकट्ठा करती, बच्चियों को, लड़कियों को, ये लड़कियों की एजुकेशन का मामला था, और उन्हें पढ़ाती। जितना विरोध बढ़ा उनका, जितनी उनके खिलाफ आवाजें उठी, उतना ही उनका हौसला और मजबूत हुआ। पूरे उत्साह से उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी। स्कूल में लड़कियां अब तालीम हासिल कर रही थी, कुछ लोग इसको सपोर्ट भी करने लगे, क्योंकि सावित्री बाई का कहना था कि अगर लड़कियां शिक्षित बनेंगी तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के माहौल को शिक्षित बनाएंगी।
मुश्किल और महान कार्यों का रास्ता रोका नहीं जा सकता। शिक्षा नारी की सबसे बड़ी ताकत है। साहस और धीरज से समाज की सोच बदली जा सकती है, क्योंकि एक मजबूत औरत पूरे समाज को मजबूती दे सकती है, नई दिशा दे सकती है। नारी केवल शक्ति का सिंबल नहीं है, वो संस्कार, साहस और परिवर्तन की, तब्दीली की नींव है, आधारशिला है, उससे ही तब्दीली शुरू होती है। तो डॉक्टर अनुराधा पांडे जी, आपका संदेश सर आंखों पर। और बहनों भाइयों, आज हर फील्ड में नारी को आगे बढ़ते देखकर के अब पुरुष भी कहने लगे हैं, क्या कहने लगे हैं,

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आप सुन रहे थे चिंतन। आज के चिंतन में शामिल आलेख डॉक्टर अनुराधा पांडे ने भारतीय उच्चायोग से भिजवाया। आप हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं और आज आयोजन कर रही हैं हिंदी महिला कवि सम्मेलन का। आपके इस सम्मेलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4:30 बजे से भाई कवियत्रियों की रचनाएं जो हैं वहां गूंजेंगी। वह अगर भाई मंच पर बोलने का मौका दे तो मैं भी साड़ी पहन के आ जाऊं। लेकिन आई डू एक्सेप्ट दैट महिलाएं हर फील्ड में, आज साहित्य में, संगीत में और खेल के मैदान में और सीमा पर या राजनीति में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के आयोजन के लिए और भाई सभी महिलाओं को भी जो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। रश्मि मिश्रा जी, आपको भी बधाई। आप बहुत सारी महिलाओं को साथ लेकर के कई फील्ड्स में जो कार्य कर रही हैं। भाई चिंतन में शामिल गीत याद है कौन सी फिल्म का था? नारी कुछ ऐसन आगे निकल रही है, स्वयंवर था फिल्म का नाम और उसमें मेरा ख्याल है विद्या सिन्हा थी शायद और संजीव कुमार। भाई पुरानी फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है रवि शर्मा जी की, क्योंकि रवि शर्मा तो आजकल का नौजवान है। चलिए साहब, चिंतन को गंभीरता से लीजिएगा, बाकी बातें हंसी में भले ही उड़ा लें, चिंतन को सीरियसली लिया करें। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK फिर याद दिला रहे हैं। भाई अगर आप अपनों को पैसे भिजवा रहे हैं तो नोट कीजिए आज का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आर गिविंग फॉर £1 हाउ मच? 129.05 रुपीस, 129 रुपए और 5 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Harry Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.
7: Leicester, the biggest celebration of the year is here.
8: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
7: Gavia Silks,
8: Rafiq Catering
7: and Jungle Club,
8: Glozo,
7: Mars, Dreams
8: and Neslo Estate Agents.
7: Join the fun with games, dancing and live anchoring and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee or £200 for 15 snacks of sugar.
8: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester. Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham.
7: Where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
8: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
7: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
8: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
7: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win. Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801, and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
9: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
7: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900
0: 2323. Aur DJ saab, ye geet suniye. Ye geet sunwate hue mujhe yaad aa raha hamare जो रेगुलर कंट्रीब्यूटर है देशराज बैसन साहब, वो कहते हैं कि आज गुजरे जमाने की अभिनेत्री वहीदा रहमान जी की 88वीं जयंती है। हाँ जी, उनका जन्म 14 मई को हुआ था, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि 3 फरवरी भी उनका जन्मदिन होता है, भाई किसी और नजरिए से। लेकिन वहीदा जी एक जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, आप जानते हैं, और आज भी वो ग्रेस उनके व्यक्तित्व में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, और आप वो फिल्में भूले नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो एक तेलुगु यानी तमिलनाडु के, क्योंकि वहाँ उनका जन्म हुआ था, उनका तो एक तेलुगु भाषी फिल्म से की थी, लेकिन उसके बाद में राम और श्याम, गाइड, प्यासा, पत्थर की सनम और बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने। मुझे तो उनकी फिल्म बहुत पसंद थी, वह ब्लैक एंड वाइट थी, शायद तीसरी कसम शैलेंद्र ने बनाई थी, फिल्म साफ सुथरी थी, चली नहीं है और बात है, लेकिन वहीदा जी चली भाई।

0: जुगनू, व्हाट अ सॉन्ग दैट वाज। एंड भाई ये गीत कौन गा रही थी जुगनू फिल्म में? लता मंगेशकर। गीत सुनाने के बाद भाई बहुत सारे फैंस हैं लता जी के हमारे श्रोताओं में, और भाई और गायक कलाकारों के भी, आशा जी के, कविता कृष्णमूर्ति और सब, पुरुषों में रफी साहब, मुकेश, किशोर कुमार के श्रोताओं से हमें कुछ कहना है। कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय, भाई ये कलाकार इकट्ठे हो रहे हैं और किशोर कुमार को, किशोरदा को श्रद्धांजलि स्वरूप जबरदस्त प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं विद 515 बैंड। इट टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिकवल। नोट कर लीजिए 19 जून को ये कार्यक्रम हो रहा है प्रिंस रीजेंट होटल में, जो चिकवल में है। एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका गोल्ड रेडियो। लाइका रेडियो,
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें जिंदगी में प्यार नहीं मिला, और कुछ लोगों की शिकायत यह है कि उन्हें पूरा भंडार मिला। अब समझ नहीं आ रहा है कि किससे करें किससे ना करें।
1: किस किस किस किसको किसको

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: दर्द भरे गीत पसंद आ रहे हैं हमारे श्रोताओं को, कहते हैं टपकाते रहो, सुनवाते रहो, परोसते रहो। लीजिए साहब, हाजिर है एक और ऐसा ही गीत। बार बार तो एक क्या समझाए पायल की झनकार, तेरे बिन साजन लागे ना जिया हमार। दिल की मुसीबत ये है कि दिल नहीं लगता।

0: बेसहारों का सहारा है, ये दर्द कितना प्यारा है, कितना मधुर है। लता मंगेशकर की आवाज, लागे ना मोरा जिया। भाई घूंघट फिल्म से हमने आपको ये गीत सुनवाया, और याद होगा आपको कि भाई घूंघट फिल्म के संगीतकार थे वन एंड ओनली रवि साहब। और मजे की बात है कि फिल्म के हीरो का नाम भी रवि था। प्रदीप कुमार, बीना राय की फिल्म, आशा पारेख, भारत भूषण, रहमान, मीनू मुमताज, ऐसे ऐसे कलाकार थे। पर मुझे कैसे पता भाई, कहीं पढ़ लिया है, मुझे कुछ नहीं पता। जब भी किसी पुरानी फिल्म का जिक्र करता हूं, आप मेरी उम्र जो है वो काउंट करने लगते हैं। इतनी पुरानी फिल्मों के बारे में जानकारी रखते हैं, जरूर कोई बुजुर्ग साहब हैं ये। बहुत पुरानी नहीं है, 1960 की फिल्म है, 1960 की, और रामानंद सागर थी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर। घूंघट, व्हाट अ सॉन्ग दिस वाज। भाई और भी गीत इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू द पाउंड्स रेट बाय SBI UK।
1: SBI UK मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, रिमाइंडिंग, पैसे भिजवाने हैं तो भाई रेट अच्छा चल रहा है, नोट कीजिए। एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 129.05 इंडियन रुपीस, 129.05 का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई। Laika Radio.
2: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
3: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
2: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
3: Also explore 2026 cruises
2: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: Asia Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Ab London baithe milega Asian ethnic swad instantly thanks to Jamin Foods.
4: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
3: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with Jamin Foods.
5: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
6: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
5: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
6: Or sales at leicamedia.co.uk.
7: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
8: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work that way. For quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
7: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
9: और भाइयों भाइयों, आर्टिस्ट ऑफ द वीक, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है क्या? इस सप्ताह महेंद्र कपूर जी के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन उससे पहले भाई जरा ये सुनिए, ये क्या कह रहे हैं शर्मा जी के बारे में?
10: मैं जब भी लंदन आता हूँ, रवि शर्मा जी के प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ। वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करते, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, उनकी स्माइल भी जेन्युइन है। जय माता दी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। मेरे भाई रवि शर्मा जी को और मेरे जितने भाई बंद, मेरे दोस्त यार लंदन के हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। जय माता दी।
9: जय माता दी। कितने अच्छे और सच्चे इंसान है भाई गोविंदा जी, एकदम सच बोलते हैं जो भी बोलते हैं। अब साहब महेंद्र कपूर हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक, गोविंदा नहीं, लेकिन हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं ये गोविंदा जी के पूजनीय पिताजी पर पिक्चराइज है। पिताजी हाँ, अरुण आहूजा वही इस गीत में नजर आते हैं गाते हुए। हालांकि जज्बात किसी और के हैं, हालात किसी और के हैं, लेकिन उनके होठों पर ये गीत सजा है। कौन सा गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में? भाई बताया कि मनोज कुमार की फीलिंग्स हैं, बाला सिन्हा की जो है वो दिल की बातें हैं, और गा कौन रहे हैं? महेंद्र कपूर। पिक्चराइज किन पर हुआ है? अरुण आहूजा पर। अरुण आहूजा गोविंदा जी के पूजनीय पिताश्री, नाव चलाते हुए गाते हुए वही नजर आते हैं इस गीत में। सुनिए और कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच नैना शाह जी।

0: लोगों को शायद जानकारी ना हो कि गोविंदा के पूजनीय पिता श्री भी बड़े पर्दे पर भाई भूमिकाएं निभा चुके हैं। तो अरुण आहुजा पर पिक्चराइज था ये गीत, लेकिन फिल्म के हीरो हीरोइन के जज्बात वो व्यक्त कर रहे थे नाव चलाते हुए। राइट, थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से भाई, नैना शाह ने सुझाया और हमने सुनवाया। और अब आगे बढ़ते हुए गीत आ रहा है कौन सा, मुकेश जी की आवाज में, मुकेश जी की आवाज में है ये गीत, आप पहचानिए भाई। आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं आवाजों को पहचानने में, पर ये गीत सुनवा कौन रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley,
2: soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ओ वाले सॉन्ग, लेकिन भाई गीत थोड़ा छोटा नहीं था, मैंने नहीं रोका, लेकिन गीत यहीं समाप्त हो गया, ऐसा लगा जैसे जल्दी खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, पूरा भी सुनाएंगे। लेकिन ये एक मैसेज आया है एजाज भाई का, चेशम से, कहते हैं कि जो वो गोविंदा के पूज्य पिताश्री नहीं है तो कौन है? बोले एक्टर बीएम व्यास लगते हैं मुझे तो, भाई हो सकता है, या आप कहते हैं मेरे ख्याल में, देखो ये उनकी क्या कहेंगे पोलाइटनेस है। और भाई वो नैना शाह के ख्याल में वो गोविंदा जी के पिताजी हैं, और भाई मेरे ख्याल में तो आप दोनों ही सही हैं, मैं किसी क्योंकि मेरे दोनों ही बहुत प्यारे लिसनर हैं आप, और बहुत ही न्यारे। रानी स्लो में आप सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको गीत बहुत पसंद आया। और भाई दिनेश पोपट जी, आप तो

0: मुकेश जी के दीवाने हैं, जितने भी गाने हैं जो मुकेश जी ने गाए हैं वो हमने आपके लिए बजाए हैं, आप स्वीकार कीजिए। बाय द वे इनवॉइस किसके नाम की बनाऊंगी? विजय मॉरिशस में कहते हैं नमस्ते पंडित जी, दोपहर की राम राम, और हमें वो दिल्ली वाली कह रही है गुड मॉर्निंग। अब वो दिल्ली वाली आपके यहाँ तो शाम होने वाली है, मिसेस कालड़ा, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा कालड़ा जी हमें दिल्ली में सुनती हैं और बताती हैं कि सुन रही हूँ। ओके मानसी, आप कहाँ सुन रही हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। और गुरुदेव गांजा, नरेंद्र पांचाल टोरंटो में हमें भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। उल्लास जी, थैंक यू वेरी मच उल्लास, सुनती रहिएगा। हिना, देशराज बैसन साहब, नैना, प्रतिभा, प्रतिभा कहती है कि वो रश्मि मिश्रा का आपने नाम लिया, वो तो इंडिया चले गए। अरे वो कहीं भी हो भाई, वो सर्वव्यापक हैं, ऐसा लगता है जैसे आसपास ही हैं, और नारी शक्ति का परिचायक है उनका व्यक्तित्व। पम्मी शाह स्लो में सुन रहे हैं, थैंक यू। सहर जी, अर्जुन जी, फरीदा गुलाम अली, थैंक यू। जगदीश भूषी में सुनीता शर्मा, रागनी और वत्सला जी, क्या बात है, आपने चिंतन सुना, नारी कुछ ऐसे आगे निकल रही है भाई, सचमुच निकल रही है। आप कहती है कि जय माँ जगत जननी नारीश्वर, प्रभु नारीश्वर यानी भगवान भी शक्ति के साथ ही शक्तिमान बनती है और वो शक्ति नारी है। अनिल सोनी वियाना में सुन रहे हैं, आप भी तारीफ कर रहे हैं महिलाओं की, भाई आपको किसका डर है, कहते हमारी तो खैर बात हो रहा है क्योंकि पत्नी घर से काम करती है तो सुनती है वो, तो हमें तो भाई थोड़ा नहीं, ऐसी बात नहीं, डरता नहीं हूँ मैं, नहीं नहीं मैं किसी, मैं छोड़िए साहब क्या रखा, सच्ची बातों में क्या रखा, छोड़ते हैं। हंसा बोरा, नीला चौधरी, अरुणा, भूपेंद्र पटेल, रंजन, कृष्णा कालड़ा, राजेंद्र राज, राजेंद्र राज जी थैंक यू वेरी मच, लतीफे भेज रहे हैं आप, कहते हैं कि दूल्हा विदाई के समय बड़ा घबरा गया जब उसकी सास ने कहा, देखो विदाई हो रही है, दुल्हन गाड़ी में बैठ गई है और दूल्हे ने अपनी सास के पांव छुए, तो सास ने क्या कहा, ऐसा क्या कह दिया कि दूल्हा बहुत घबरा गया, डर गया। सास ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना, अपना बचाव करना, और हो सके तो हमें माफ कर देना। थैंक यू राजेंद्र राज जी। भरत गंगाराम और सलमा मेडस्टोन में लगातार सुनती हैं हमें। हरीश रोडा जी हमारे डेडिकेटेड लिसनर, जय श्री, आपको कैसे भूल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपने को किसी और गीत का जिक्र किया है कि वो गीत डिंपल जी पर पिक्चराइज हुआ था, पर कौन सा गीत था भाई वो नहीं लिखा आपने। और नीलम, थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड मॉर्निंग में मैसेज भेजता था, गुड आफ्टरनून में रिस्पॉन्स मिल रहा है। फारूक मोहम्मद, थैंक यू एज ऑलवेज यू आर विद मी। अन प्रकाश नॉर्थोल्ड में निर्मला जी, हेतल सोलंकी, अलका, ये जो अलका अलका सुरूर है। जहीर खान कराची में सुनते हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। भाई आप सबको धन्यवाद दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं और याद दिलाते हैं आपको कि हम यानी लाइका रेडियो नेटवर्क जो है वो एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं बहुत सारे कार्यक्रमों के जो आ रहे हैं, उनमें एक तो शामिल है भाई प्रोग्राम जो मेला 2026, लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबे पार्क, और इसके अलावा ब्रैडफोर्ड सिटी मेला 1st and 2nd of August से भाई ये सिटी पार्क में है, तो वहाँ भी हम पार्टनर हैं, और हम पार्टनर हैं रागासंस के साथ भी भाई। लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड ए पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटलिटी ब्रांड रागासन, डिटेल्स एट laikaradio.com।
1: ये है लाइका रेडियो। This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: रूट कर जब वो हमसे दूर जाने लगे, हम भाई वो सारी अकड़ छोड़कर, नखरों की दीवार तोड़कर, जी जान से उनको मनाने लगे, और जब वो नहीं माने तो हम उन्हें नए नए डर दिखाने लगे। जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे हमारे निधन की खबर आएगी।
2: ओ मेरी मेहर।

0: track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: और लीजिए साहब, नोट कीजिए रेट्स इस समय के. LemFi द्वारा स्पॉन्सर्ड ये रेट्स एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में मिल रहे हैं 129.39 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 376.44, श्रीलंकन रुपए 439.52, बांग्लादेशी टकाज 165.89 और अफगानी 86.47.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
3: And the gold is sold at the rate of 111.49 pounds per gram.
2: Specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester. Or call 0116 266 4278. Leica Radio. Finalist at the Radio Academy Arias 2026.
3: और अब बात फिर से इश्क की करें. इश्क में मेरे जाने किस किसने की रुसवाई, किस किसने क्या, लोगों ने की, कुछ तुमने बदनाम किया और कुछ आग लगाई लोगों ने. क्या हुआ अंकल?

0: उता फिरू बादलों की तरह, ठंडिया है भरू पागलों की तरह। ऐसा क्या देख लिया भाई तुमने जो तुम पागल हो उठे हो, ऐसे परेशान हो गए
1: पागलों की तरह रो रहे हो?
0: पता नहीं क्या देख लिया,
1: क्यों पागलों की तरह रो रहे हो?
0: मैडम आप क्या कर रही हैं इस समय यहाँ?
1: मैडम बाली जी जो एब्सेंट है तो फिर मैं उनकी जगह इस हॉट सीट पर बैठूंगी।
0: ओके तो कुछ ज्यादा ही होटल बता देता हूँ आपको। सरिता अग्रवाल।
1: ओए अग्रवाल होंगे आप
0: तो? आप क्या हैं?
1: शर्मा जी
0: क्या?
1: मैं सबरवाल।
0: ओके ओके
1: बहुत अच्छा, सबर करती हूँ
0: मैं। सरिता अग्रवाल ऐसे कहता हूँ जैसे मैं उनको कहता हूँ अनीता नासिर। सरिता सबरवाल विल बी योर होस्ट आफ्टर 1 o'clock न्यूज, क्योंकि बाली जी नहीं और क्या कुछ समेट के लाई हैं, बटोर के लाई हैं।
1: वहीदा रहमान जी का बर्थडे मनाएंगे।
0: ओके
1: अमरनाथ जी की डेथ एनिवर्सरी पे उन्हें याद करेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सारी सामग्री। इधर उधर की बातें और बहुत सारे गीत होंगी, मुलाकातें। सरिता सबरवाल आपकी मेजबान होंगी खबरों के बाद। रवि शर्मा प्रोग्राम समेट रहा है, पर जाते जाते क्रिकेट की बात तो करूंगा भाई। ये है Leica Radio, India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket. दोपहर बाद 3 बजे भाई शुरू होगा मैच IPL 2026 का। आज का मुकाबला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। दिलचस्प होगा ये भाई मैच, ये भिड़ंत, और स्कोर के आंकड़े हमारे यहाँ से सुनते रहेगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ। इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Leica Radio.
2: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs सिर्फ $24.99.
2: Hamza Samosas 3 for $10.
3: Top Star Fried Onions only 99p.
2: Suhana Masalas 2 for $150. Ramdev Namkeen 2 for $149.
3: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
2: Kesar Mango Pearl 149. Full Makhana 2 for $5. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE12JU या Rolex Hill LE54UN.
2: While stocks last.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
6: 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu. Ayurveda that fits your life.
10: 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
11: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
10: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk સખણા રેજો હસબન્ડજી
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
13: Leica Radio.
14: Manoranjan with Ravi Sharma.
15: And that's it. Bharahoyo, ye tha aaj ka Manoranjan program. Ab jaate jaate ye vaada lena hai. Ki gaate rahiye, gungunate rahiye. Aur studio mein hame bulate rahiye. कभी अलविदा ना कहना।

0: गुड आफ्टरनून, दिस इज सरिता सबरवाल सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट जी, और मुझसे पहले थे यहाँ रवि शर्मा जी. और अब प्रोग्राम का आगाज हो चुका है बाली जी के शो का. एंड पहला गीत आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, आशा जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ें. एंड दूसरा गीत था आशा जी की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म अगर तुम ना होते. पहला गीत 1995 की फिल्म थी, तो दूसरा गीत मैंने चुना था 1983 की फिल्म से. उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए और इन्जॉय किए. आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में मिले जुले गीत होंगे. हो सकता है कि इन दोनों गीतों में जैसे जरा वर्ड आ गया, तो हो सकता है कि बाकी के गीतों में भी आपको यही कुछ सुनने को मिल जाए. लेकिन नेक्स्ट आवर में एंड थर्ड आवर में भी हम याद करेंगे. सबसे पहले तो वहीदा रहमान जी बर्थडे मना रही हैं, तो उनके बर्थडे की सेलिब्रेशंस होंगी, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी. एंड देन के अमरनाथ एक डायरेक्टर हुए हैं जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है, तो उनको भी याद किया जाएगा उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए. सो मेरा साथ इसी तरह से देते रहिए. पर जरा पूछ लूँ आपसे, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक तो है ना? जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें. ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून. इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप. लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू इंजॉय. जियो शान से, मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और तिरकते हुए. गाने तो चुन चुन कर लाती है सरिता आप ही के लिए. सो जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है अपने मैसेजेस के जरिए, मुझे एहसास दिला रहे हैं कि आप मेरे आसपास मेरे साथ साथ हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. और जो अभी क्वाइटली प्रोग्राम के दोनों गीतों को तो इन्जॉय किया, जरा देखना चाहते हैं आगे क्या होता है, तो कोई बात नहीं, आगे भी अच्छा ही होगा. अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन सरिता करती रहेगी. अब जरा ये मैसेज भी आपके साथ शेयर कर लूं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए कहीं भी पैसे इंडिया में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है. यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. और आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है. लो जी, अब तो एक पाउंड के बदले 129 रुपीज़ एंड 5 पैसास दे रहे हैं. लेकिन इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं. जितना बड़ा अमाउंट होगा रेट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. सो आज ही इनसे संपर्क कीजिए.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम. कैसी हो तुम?
4: खातून कौन थी?
3: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस.
4: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
5: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट. 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो. इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th of May.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a beautiful song. Madan Mohan ji ka sangeet film ka naam tha Haqeeqat. 1964 mein aayi thi ye film. Aur aapko ye gaana bahut acha laga, ye jaankar bahut acha laga. Aapke messages mujhe barabar mil rahe hain. Thank you ever so much. Aur thanks main karna chahti hoon apne sabhi sunne walon ka. क्यों? क्योंकि आज ही नई हमारी फिगर्स आई हैं, रिजार फिगर्स, और लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन. लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रिमेंड consistent and with Like a Gold now being listened to longer than any other commercial Asian radio station. तो इसके लिए ये तालियां आप सबके लिए. Thank you so much. ये सब आपकी बदौलत है. जी हाँ, अगर आप हमें अपने कान उधार नहीं देंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. सो ये नई जो रजा डेटा आया है लेटेस्ट, उसके मुताबिक मैंने ये आपको बताया है और आपके हम शुक्रगुजार हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. इसी तरह से सुनते रहिए और साथ देते रहिएगा.
0: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया है कौन कौन से गीत आपको पसंद आ रहे हैं और उनमें क्या क्या है.

0: हेमंता की आवाज और उन्हीं का संगीत फ्रॉम द फिल्म 20 साल बाद.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 129.32, Pakistani rupees 376.41, Sri Lankan rupee 439.45, Bangladeshi taka 165.87, and Afghani is 83.73.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LEICA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Right, gold का रेट है इस वक्त मार्केट में 112 pounds and 12 pence का एक ग्राम सोना.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: और अब आपकी सेवा में मैं पेश करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा. एंड ये गाना भी बहुत दिनों बाद हम सुन रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे. चलिए बढ़ते हैं गीत की तरफ. मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ें.
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
0: जन्म जन्म के फेरे ये था फिल्म का नाम. 1957 की फिल्म. रजिंद्र कालरा जी एक बहुत ही पुराने से गीत की आपने फरमाइश की जो 1949 की फिल्म है जल तरंग. उसमें भी एक गीत है जिसमें ज़रा वर्ड आता है लेकिन सैंडी शाह है ना वो यही है स्टूडियो के बाहर ही तो वो मुझे कहेंगे कि ये कोई तुम्हारा कौन सा प्रोग्राम है गोल्डन नाइट नहीं विंटेज गोल्ड प्रोग्राम चल रहा है या बाली जी के प्रोग्राम को आप पेश कर रही है. तो ओके I'll definitely see, I'll just check and if I am able to play that song. पर ये गाना मैं आपके नाम करती हूँ.

0: गीतों की ये गीत कहाँ आजकल सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथी भी कह रहे हैं, जस चशम में सुन रहे हैं प्रोग्राम, मानसी जी, तोची जी, रोहित जी, विजय गुजरोई सटन में सुन रहे हैं, सलमा मेडस्टोन में, एंड मोहम्मद यूनस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मलाड मुंबई में सुन रहे हैं आप प्रोग्राम, एंड साइदा मुगल सलाव में, दिनेश पोपट जी, रजिंदर सिंह कालरा जी, जगदीश जी इन बुशी, एंड मिसिस पाकी चियांग, आपने भी लिखा है बड़ा प्यारा सा मैसेज, थैंक यू सो मच। महेंद्र पटेल इन क्रॉयडन, उल्लास इन टोरंटो, विजय जी आपका दूसरा मैसेज भी मिल गया, हंसा वोरा जी, मीना लखानी जी, सहर जी, पमी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। राइट, टॉकिंग अबाउट वहीदा रहमान, वहीदा रहमान की डेट ऑफ बर्थ के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर हम विकिपीडिया देखते हैं, गूगल करते हैं, तो उनका आता है 3 February 1938, लेकिन जिस सोर्सेज से मैंने या बाली जी ने देखा है, तो हमारे मुताबिक आज है उनका बर्थडे। सो एनीवे, आज है या नहीं है, पर हम आज उनका बर्थडे मनाएंगे, और ये गीत हमें पहुंचाएगा न्यूज तक।
1: Like a Radio 90s, Like a Radio Punjabi, Like a Gold 2, now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने एंड पहला गीत लम्हे फिल्म का था, 1991 में आई थी लता जी एंड हरिहरन की आवाजें थी उस गीत में शामिल एंड शिवहरी का संगीत एंड चांदनी का गीत आपने सुना, 1989 की फिल्म थी एंड आशा भोसले एंड विनोद राठौर की आवाजें आपने सुनी। वेल, आप कहेंगे कि वहीदा रहमान का बर्थ है, ये गाने तो वहीदा रहमान पर पिक्चराइज नहीं हुए थे, पर वहीदा रहमान ने इन फिल्मों में काम किया था, डू यू नो। वेल, पहला गीत था लम्हे का और लम्हे के लिए भी, और दूसरा गीत फिल्म चांदनी से और चांदनी के लिए भी। इसके अलावा 1976 की फिल्म कभी कभी एंड 1982 की फिल्म नमकीन, इन चारों फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किसके नाम गया था, वहीदा जी के नाम ही। सो वहीदा जी के बारे में बहुत सी जानकारी आप रखते होंगे, बहुत एविड फैन भी होंगे आप उनके, और उनके बारे में जो जो जानते हैं मुझसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम गूगल करते हैं तो आता है वहीदा रहमान जी का बर्थडे 3 फरवरी 1938 में हुआ था, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उनका बर्थडे आज ही के दिन 1936 में हुआ था। सो कोई बात नहीं, अगर बर्थडे आज नहीं भी है तो वहीदा जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। एंड शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस ऑफ हिंदी सिनेमा। शी हैज़ अपीयर्ड इन मोर देन 90 फीचर फिल्म्स इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 5 डेकेड्स एंड हर शी रिसीव्ड अ नेशनल फिल्म अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, शी वॉज ऑनर्ड विद इंडिया सिविलियन अवार्ड पद्मश्री इन 1972 एंड द पद्म भूषण इन 2011 एंड इन 2021 शी वॉज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियाज हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सो बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनके काम को बहुत सराहा भी गया। अगर आपकी कोई ख़ास फेवरेट फिल्म थी वहीदा जी की और उस फिल्म का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। 1959 में उन्होंने कागज़ के फूल में काम किया था, देन प्यासा में, 57 में चौदहवीं का चांद इन 1960, साहेब बीबी और गुलाम इन 1962, गाइड वॉज वाव आउटस्टैंडिंग फिल्म फॉर विच शी वन हर फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। सो इन फिल्मों के जिनके नाम मैंने लिए, अगर इनमें से कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। राम और श्याम, नील कमल, खामोशी 1969, दैट वॉज अ वेरी नाइस फिल्म एज वेल, रेशमा और शेरा इन 1971, और इसके लिए शी वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और भी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले जरा ये हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं कहीं भी इंडिया में तो आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 129 रुपीज एंड 5 पैसा फॉर 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। एंड To transfer the money, it's very easy. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम आप तक कौन पहुंचाते हैं? जी हाँ, जैमिन फूड्स वाले।
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone. Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: या ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN
2: while stocks last.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: 105 शोज पूरा कर पछी हवे लेस्टर मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
6: जेज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहया छे सखना रे जो हसबंड जी,
5: रीना शाह अने समीर शाह साथे हासियनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655, मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। सखना रे जो हसबंड जी।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
0: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ।
9: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
10: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
9: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
12: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
13: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊँगा।
14: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
12: अरे कहाँ हो तुम?
13: हो आलो आलो।
14: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
15: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
16: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
17: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से।
15: अनुपमा मंडे टू संडे एट 8:30 PM ओनली ऑन उत्सव प्लस। उत्सव प्लस स्काई चैनल 705, वेजी मीडिया 803 एंड EE392।
18: प्रेजेंटेड बाय साउथ होल ट्रैवल, पावर्ड बाय टाटा टी प्रीमियम एंड वेल मैन एंड वेल वुमन बाय विटाबायोटिक्स।
19: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
16: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अभी भी मेरी आंखों के सामने वही सीन चल रहा है, नीतू सिंह जब जाती हैं वहीदा रहमान के घर मिलने के लिए, तो वहाँ पर ये गाना पिक्चराइज होता है, क्योंकि उनकी डॉटर होती है एंड शी डिडंट नो कि वो उनकी डॉटर है। बहुत प्यारा गीत था और मुझे उम्मीद है कि आपने पसंद भी किया। वहीदा रहमान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उनकी फिल्मों के कुछ एक गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप पसंद कर रहे हैं। राइट, 16वां साल में भी उन्होंने काम किया था इन 1958, उससे पहले भी कुछ एक फिल्मों में उन्होंने, वेल तमिल फिल्मों से उन्होंने शुरू किया था, तेलुगु फिल्म से इन 1955, और उसके बाद अर्ली उनकी फिल्म्स में फिल्म थी 16वां साल, देन सुरेश कोहली की द हिंदू एंड 16वां साल फिल्म थी, एंड रहमान वहीदा रहमान परफॉर्म कॉट आई द कॉट आई ऑफ हिंदी फिल्म मेकर गुरुदत्त एंड होम शी कंसिडर्ड हर मैंटोर, एंड गुरुदत्त ब्रॉट हर टू बॉम्बे और वहाँ पर उन्होंने उनकी बहुत सी फिल्मों में काम किया, एंड शी एक्टेड एज कामिनी इन द क्राइम थ्रिलर सी आई डी इन 1956 बिकॉज ऑफ द ट्रेंड सेट ऑफ देन पॉपुलर एक्ट्रेसेस सच एज मधुबाला, नरगिस, मीना कुमारी थी उस वक्त सीन में। तो वहीदा रहमान वॉज आस्क्ड टू यूज अ स्टेज नेम or something different, लेकिन she refused and she said no, this is my name and I will use this name. और प्यासा में फिर 1957 में उन्होंने काम किया था, गुरुदत्त के साथ उनकी जोड़ी बहुत बहुत पसंद की जाती थी। She continued working with गुरुदत्त, which included 12 o'clock film 1958 की, कागज़ के फूल इन 1959, चौदवी का चांद इन 1960, एंड सभी फिल्मों के लिए उन्हें बहुत प्रेज मिली थी। एंड वहीदा रहमान एंड गुरुदत्त ने लास्ट जिस फिल्म में काम की थी वो थी साहेब बीबी और गुलाम। अब मैं आपसे आपको चॉइस देने जा रही हूँ, चलिए मैं आपको चॉइस देती हूँ दो गीतों की, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि फिल्म गाइड का आप कौन सा गीत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, कौन सा गीत आपके दिल के करीब है। आज फिर जीने की तमन्ना ए, गाता रहे मेरा दिल बी, और पिया तो से नैना लगे सी, ए बी सी। ए इज आज फिर जीने की तमन्ना है, बी गाता रहे एंड सी पिया तो से नैना लागे। कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी बता दें। लेकिन जो गीत आपने अभी अभी सुना था फ्रॉम द फिल्म कभी कभी, वो आप तक पहुँचाए किसने?
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Leica Radio.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और ये मैंने चुना है from the film पत्थर की सनम। बहुत प्यारा गीत है, लता जी का साथ दे रहे हैं मुकेश जी। Enjoy कीजिएगा इस गीत को, और भी बहुत सी बातें होंगी बाद।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: और भैया अब सरिता आपको ये बताने जा रही है कि आतिफ असलम लाइव आ रहे हैं. लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द आतिफ असलम लंदन कॉन्सर्ट टेकिंग प्लेस ऑन 14th जून एट द O2 लंदन एंड टिकट्स अवेलेबल एट AXS एंड द वेन्यू. और लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन. डिटेल्स एट द laikaradio.com.
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
1: Zyada vote.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट पल जल्दी से बता दें कि आपको क्या करेंसी रेट मिल रहा है आज. इंडियन रुपीस में एक पाउंड के बदले मिलेगा 129.23, पाकिस्तानी रुपीस 376.13, श्रीलंकन रुपीस 439.25 एंड बांग्लादेशी टका 165.76, अफगानी 84.34.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: राइट गोल्ड का रेट है इस वक्त मार्केट में लेटेस्ट अभी जो रेट आया वो है 111 pounds and 68 pence पर ग्राम.
0: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स. विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278. Cranking out the biggest hits for the capital. This India is LIKA. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
1: राइट भी आपको बता दें कि मैच शुरू होगा 3 बजे, बस थोड़ा ही वक्त बाकी बचा है और मैच है आज IPL का किसके बीच, पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस के बीच. तो इंतज़ार कीजिए, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, खेलेंगे खिलाड़ी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
1: मेरे वो साथी जो बराबर मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच. मैं वैसे व्हाट्सएप के जरिए आपको वापस जवाब दे रही हूँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं आपके नाम नहीं ले रही तो मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ. नहीं, थैंक यू एवर सो मच. और बहुत से नए नए नाम भी हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. इसी तरह से सुनते रहिए. और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, बात एक रात की फिल्म से मैंने चुना है, 1968 की फिल्म न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने. बहुत प्यारा गीत वहीदा जी की ही फिल्म थी बात एक रात की, उसी फिल्म से मैंने चुना है इस गीत को. और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका जीवन हमेशा सुखी रहे, लंबा और निरोग जीवन रहे, और इसी तरह से कभी कभार आके हमें अपनी शक्ल दिखाती रहें.
2: गोल्ड आफ्टरनून प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया. दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, बस पेट संभाल जो क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने वाली है.
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: आशा भोसले एंड अनवर की आवाजें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म आहिस्ता आहिस्ता। 1981 में आई थी ये फिल्म। एंड आज के प्रोग्राम के लास्ट आवर का आगाज मैंने किया मिस्टर बेचारा के गीत के साथ। 1996 की फिल्म थी, अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाजें, खोई खोई आंखों में। दोनों गाने मुझे पसंद आए, आपको पसंद आए ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड भाई पम्मी सिंह जी स्लाव से क्या लिखते हैं आपको। अच्छा ठीक है, मैं बहुत अरसे से आपको सुन रहा हूँ, इतने सालों से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और जितने भी साथी अभी अभी जुड़े हैं, पेमी सिंह जी स्लाव से, विजय मानसी जी, अजाज जगदीश जी बुशी, रमीला पटेल, हरीश रुडा जी, दिनेश पोपट जी, मनु जी, अब आपके नाम नहीं लिखे हुए, आपने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, तो देखते हैं कौन जीतता है आज, किसको टिकट्स मिलती हैं। दिलीप रोहित, एंचारू जी, जीतू भाई, मिल्टन किन्स में, नैना शाह, और आपका भी नाम नहीं है तो कौन है आप? हाँ, अपना नाम जरूर लिखा करें। हंसा वोरा जी, उल्लास इन टोरंटो, श्रीजीत अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम, मीरा एंड युगेश एंड हंसा वोरा जी, अर्जुन जी, हना जी, वाओ मृदु, इतनी लंबी लाइन है, तोची जी, रोहित जी, सलमा फ्रॉम मेडस्टोन एंड मोहम्मद यूनस साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साइदा मुगल, इंसलाव, रजिंदर सिंह कालरा जी एंड ईस्ट लंडन एंड पाके चियांग, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिसके नाम रह गए प्लीज बाद में, थोड़ी देर बाद मैं कोशिश करूंगी और सभी के नाम लेने की। आइए अब ये काम भी कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 129 rupees and 5 paise for 1 British sterling pound। और आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, बड़ा आसान काम है, via the branch, via online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Yeah. Like our radio.
3: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me.
6: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

बहुत ही प्यारा सा गीत था और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद भी किया। आर्टिस्ट ऑफ द वीक का हमारे हैं महेंद्र कपूर साहब इस हफ्ते और उन्हीं का गाया हुआ गीत था, लेकिन इस गीत को मैंने इसलिए जगह दी प्रोग्राम में क्योंकि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था वो उनकी आज पुण्यतिथि है। के अमरनाथ, जिनका पूरा नाम था अमरनाथ गिलराम खेतरपाल, वॉज बॉर्न इन मियांवाली पंजाब ब्रिटिश इंडिया एंड ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड in Miawali college years in Lahore and inspired by Hollywood and British movies, Amarnath left home at a very young age, 17 ke the jab unhone apna ghar choda film industry ko join karne ke liye. After assisting various directors like B.R. Patel and Dhirubhai Desai, phir unhone apna production house khol liya. 1937 se 1951 ke dauran he directed 14 movies for Mohan Studio and its sister concern and Ramneek Productions थी वो और उसके बाद फिर उन्होंने अपना भी जैसे प्रोडक्शन हाउस खोला एंड के अमरनाथ वॉज अ वेरी वर्सेटाइल मैन, ही वॉज नॉट ओनली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एंड ही डायरेक्टेड मैनी मूवीज बट ऑल्सो रोड द स्टोरीज एंड स्क्रीन प्लेज फॉर मैनी ऑफ हिज फिल्म ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर। हर जॉनरे की फिल्में उन्होंने बनाई, लाइक थ्रिलर, एक्शन, सस्पेंस, टू फैमिली सोशल ड्रामास, लेजेंडरी रोमांटिक ट्रेजेडीज, सेमी म्यूजिकल कॉस्ट्यूम ड्रामास एंड मैजिकल फैंटेसी मूवीज भी उन्होंने बनाई। और अजीत खान, इफ़ यू रिमेंबर, अजीत खान एक्टेड एज ए हीरो इन 7 ऑफ हिज फिल्म्स जो इन्होंने डायरेक्ट की, बेकसूर, मेहरबानी, सरकार, बड़ा बरादरी एंड बड़ा भाई, बारात एंड काबिल खान जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इन्होंने बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया, नौशाद साहब, चित्रगुप्त साहब, ओपी नैयर साहब, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सब ने इनके फिल्मों में संगीत दिया। और श्याम सुंदर कंपोज्ड मैनी अनफॉरगेटेबल मेलोडीज सॉन्ग्स इन 3 ऑफ हिज हिट मूवीज, डायरेक्टेड बाय के अमरनाथ, गांव की गोरी, बाजार एंड अलिफ लैला। इन्होंने बहुत से लोगों को ब्रेक भी

0: वैली वाली आप तक पहुंचा रही हैं, और ये भी इन्हीं की फिल्म से नहीं, इनकी फिल्म से नहीं है, लेकिन अच्छा गीत है, आप पसंद करेंगे।
1: Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आज है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: और आज के प्रोग्राम का अगला गीत मैंने के अमरनाथ जी की ही फिल्म से चुना है। फिल्म का नाम था वो दिन याद करो, आपको याद है। पर उस गीत से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि अमरनाथ वॉज वेल नोन फॉर प्रमोटिंग एस्पायरिंग यंग इंडिविजुअल्स एंड ही इंट्रोड्यूस सलीम खान सलमान खान के फादर टू बॉलीवुड। और वो उसके बाद द फर्स्ट मूवी सलीम एक्टेड इन फॉर के अमरनाथ और उस फिल्म का नाम था बारात इन 1960। संजय खान फर्स्ट मूवी

0: Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
2: ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਲਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ
3: O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में
4: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या। Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: Zee TV HD पर देखिए एक नई कहानी।
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
4: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द UK। चॉइस एक्टिव।

0: कभी अलविदा ना कहना, और आप तो कभी अलविदा कहते भी नहीं हो. एंड वी हैव द लेटेस्ट रेजर, व्हिच इज द लेटेस्ट रेडियो लिस्टिंग फिगर्स इन टू प्रूव दिस, वेयर द लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन. वी रिमेन्ड कंसिस्टेंट विद लाइका गोल्ड नाउ बीइंग टू लिसन टू लॉन्गर देन एनी अदर कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन इन द यूके एज प्रूवन बाय द लेटेस्ट रेजर डेटा. सो बिग थैंक यू टू everybody who's loving us and listening to us for longer and longer and longer as well. And of course, all the new listeners who have joined the Parivar, lots of love going out to you. Big shouts going out to Hema Locked In and listening, saying Radio Wali Chalte Chalte title track 1976 Kishore Da Ki Awaaz, my favourite song, full marks as you blast the volume, and rightly so. Siren, lots of love going out to you. Saying Radio Wali, happy Thursday. Finishing off errands from today with your beautiful company just makes every task so much easier. Hi, meri pyari Saira. Thank you, thank you. Jitendra's in the house as well, saying fantastic energy show where no energy has gone before. Wah ji wah, kya tareefe kar rahe ho aaj, aap logo ko nazar na lag jaye. Doubling lots of love going out to you. Sham, happy Thursday. And Waj, a big salam, namaste.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So your gold is currently trading at £112.33 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica
0: Radio. Right, let's do this. We're going to go two tracks back to back. Are you ready? Kicking you off with something a bit special, with a special message. Let's do it.
2: Hi, this is Adnan Sami, and you're listening to my girl, Radio Wali. And I tell you, she's got the vibes. Keep listening. Enjoy.
0: Exactly as Adnanji just told you, I got the vibes. Stay tuned, kicking off with his latest track. I'm loving this one. And it's a little bit of lipstick. और मैंने अदनान जी से बात किया है और उसने बोला कि जब ये गाना लिख रहे थे ना तो मैं दिमाग में थी उसके लिए, ठीक है. सो ही वाज राइटिंग दिस इन माइंड कि नज़र हटा दो, नज़र ना लगे, लिपस्टिक से सारी नज़र को भगा दो. देखो मेरे दिमाग में ये स्टोरी सही है तो हम यही स्टोरी मान के चलेंगे.

0: time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special. Like a
1: radio. यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny.

0: जी थी और कविता जी की आवाज मेरी वॉज मोहब्बत सेलिब्रेटिंग माधुरी दीक्षित नैने माय गुरु माय डांस आइडल दीक्षा कैन टू वॉच सेइंग व्हाट अ टॉप शो रेडियो वाली एज ऑलवेज. Time now though, let's get on that feel-good track of the hour.
1: Feel-good track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Hey guys, this is Jubin Nautiyal and you are listening to my girl, Radio Valley.

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
6: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
5: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्य नो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सखना रे husband G.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
9: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
8: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
9: दिल तो टूट पे किया
8: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
8: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 BT 394।
11: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.